0: सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल

0: करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
10: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर

0: कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
5: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
4: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
5: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
4: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
6: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
4: Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata, in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. We have more from a correspondent.
7: After more than 10 hours of interrogation, he is the first former minister to be arrested since the BJP government took charge in Bengal. ED officials say the alleged irregularities took place between 2014 and 2016. According to ED sources, across 17 municipalities, about 1,000 employees were recruited unlawfully. In the recent assembly poll, Bose lost to BJP by over 37,000 votes. According to Enforcement Directorate, the arrest was made under provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Investigators have alleged that Bose recommended appointments of several candidates in the South Domdom municipality in exchange for financial benefits. The agency has also reported suspicious financial transactions during the course of the investigation. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
4: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU FTA. We have more from a correspondent.
8: On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. He will also hold talks with Prime Minister Rob Jetten. For the third leg of the visit, Mr. Modi

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
0: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
0: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
0: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
0: कॉस्मोस रूपे और वीजा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 107.1 MHz की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं FM Rainbow. मस्त मुंबई कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ RJ शैलेंद्र. Crazy.

सनम तेरी कसम और मुझे है आप सभी की कसम, लौट कर आया हूँ फिर एक बार आपसे मिलने। 8:52 का समय। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, किंग शो, सत श्री अकाल, आणी मुंबई कसकाय झकासना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो मस्त हो गए और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। गुड गुड गुड वाली मॉर्निंग है मंगलवार की, ये मंगलमय सुबह, सब कुछ मंगलमय हो इसी कामना के साथ लेकर आया हूँ आपके मॉर्निंग का एंटरटेनमेंट मस्त मुंबई। और मस्त मुंबई में मंगलवार को रहता है कल आज और कल, कल आज और कल में आज बातें करेंगे हमारे मुंबई नगरिया की। लेकिन अभी अभी फिलहाल जो स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय 8:52 हुआ है और आप सुन रहे हैं स्टेशन ऑफ नेशन एफएम रेनबो। मैं हूं आरजे शैलेंद्र, मेरी आवाज आप पहचानते हैं ही। आज कल और आज को आगे बढ़ाते हैं और फिर बाद में मुंबई नगरिया के बारे में भी बातें होगी। कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत नगमों के बाद।

सोनू निगम, आफताब शबरी और हाशिम शबरी की ये आवाज़ें हैं इस गीत में, जावेद अख्तर साहब के लिखे बोल और अनु मलिक का कंपोजिशन। फिल्म है मैं हूं ना।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मनवा लागी हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म से ये गीत श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म तो बहुत एंटरटेनिंग थी, लेकिन अभी हैप्पी न्यू ईयर रहा नहीं है। हम लगभग जो है वो आधे साल के करीब करीब जो है पहुंचने वाले हैं। पांचवा महीना चल रहा है। आने वाला बाकी जो साल है वो भी बढ़िया तरीके से एंटरटेनमिंग हो, इसी कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 9:05 का ये समय स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। दोस्तों, मुंबई ऐसा शहर है जो रोज बदलता है। इसके बदलाव में, इसकी उन्नति में कई बड़े लोगों का योगदान है। अब बड़े लोगों में, मुंबई की उन्नति में या मुंबई की प्रगति में अगर बड़े लोगों का विचार किया जाए तो कोई कहेगा टाटा, बिरला, अंबानी, लेकिन आधुनिक मुंबई की नींव रखने वाले दरअसल एक मराठी इंसान है, महाराष्ट्रियन इंसान है। ये जो करोड़पति या फिर अब्जोपति की संकल्पना किसी के माइंड में भी नहीं थी, तब उनके पास, उस मराठी आदमी के पास लाखों की संपत्ति थी और उस संपत्ति का उपयोग जो है उन्होंने मुंबई के उन्नति के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए किया। आज जानते हैं उनके बारे में और उनके काम के बारे में, लेकिन पहले कुछ प्यारे से नगमे एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक।

लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी की लिखी बोल, कुमार सानू का ये कंपोजिशन, फिल्म है दुश्मन।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

जाने क्यों दिल ये जानता है कि तू है तो आई विल बी ऑल राइट। हर किसी की जिंदगी में शायद कोई ऐसा होता है जिन्हें आप कह सके कि तू है तो आई विल बी ऑल राइट। अगर आपके जिंदगी में भी कोई अगर ऐसा है तो आप बहुत लकी है। विशाल ददलानी की आवाज़ थी और अन्विता दत्त गुप्ता इन्होंने इसे लिखा था और विशाल शेखर का ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंपोजिशन फिल्म दोस्ताना से। 9:21 का समय कार्यक्रम है मस्त मुंबई, और मस्त मुंबई में इस कार्यक्रम में कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है इसका जिक्र मैं हमेशा ज़रूर करता हूँ। मॉर्निंग से ही कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों में प्रदीप अनंत कृष्णन साहब है, प्रमोद चिंचोलकर है, शुभलक्ष्मी मास्तेकर, विजेंद्र घाटोले अकोला से है, प्रणव शिंदे है, शुभदा मैडम पूना से है, और भी कई हमारे सारे लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें प्रमोद कारखनीस है पूना से, और नाव्या है, नाव्या

जिन्होंने नवी मुंबई से हमें मैसेज किया था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहने के लिए। आज कल और आज इस कार्यक्रम में बातें चल रही है मुंबई के बारे में और आधुनिक मुंबई के शिल्पकार के बारे में आपको बता रहा हूं, जिनका नाम है श्री जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे। जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे, जिन्हें लोग नाना शंकर सेठ के नाम से भी जानते थे, ये बात है 1800 के दशक की। अभी तो 2026 चल रहा है, लेकिन सन 1800 के इस दशक में तब उनके पास 18 लाख रुपए की संपत्ति थी। बड़े बूढ़े लोगों के साथ खुद ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज भी उनसे कर्ज लिया करते थे। जी हाँ, ये महाराष्ट्रियन मराठी आदमी थे और 18 लाख की संपत्ति के मालिक 1800 के दशक में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ पुर्तगीज अंग्रेज भी इनसे जो है वो कर्ज लिया करते थे। लेकिन ये पैसा जो है वो सिर्फ उन्होंने कर्ज देने के लिए या सूदखोरी या फिर चैन की जिंदगी जीने के लिए खर्च नहीं किया, बल्कि मुंबई के विकास को उन्होंने प्राथमिकता दी। भारत की पहली ट्रेन जो मुंबई में चली, उसका श्रेय भी नाना शंकर सेठ को जाता है। क्या है उसके पीछे की कहानी, जानते हैं इस कहानी के बारे में, लेकिन पहले मसवाला म्यूजिक एफएम रेनबो पर आरजे शैलेंद्र के साथ कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। जल्द ही लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत नगमों के बाद।

मुंबई नगरिया का ही ये गाना है, बपिलहरी और विशाल ददलानी की आवाज है और उन्हीं के लिखे बोल, फिल्म है टैक्सी नंबर 9211।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

अरिजीत सिंह की आवाज़ है अमिताभ भट्टाचार्य की लिखी बोल और प्रीतम दा का ये एक और प्यारा सा कंपोजिशन। वैसे ये अरिजीत सिंह की आवाज़ कुछ डिफरेंट सी लग रही है, दिलवाले इस फिल्म का ये गीत। आज कल और आज में मैं आरजे शैलेंद्र आपसे बात कर रहा हूँ हमारे बम्बई नगरिया की, मुंबई शहर की। और मुंबई शहर के थोड़े से इतिहास में भी आपको लेकर जा रहा हूँ। 1853 को मुंबई में भारत की पहली ट्रेन दौड़ी, वो अंग्रेज़ों की वजह से नहीं बल्कि नाना शंकर शेठ, जिनके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद के पैसे से इंडियन रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की और अंग्रेज़ों को रेल सेवा शुरू करने पर मजबूर किया। आज जो एल्फिंस्टन कॉलेज है, जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी ऐसी महान हस्तियों ने अपनी शिक्षा पूर्ण की, वो संस्था नाना शंकर शेठ इन्होंने ही निकाली थी। ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो नाना ने मुंबई को दी है और उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने जैसी हैं उसके बारे में भी, और उनके मुंबई के प्रगति में जो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बारे में और थोड़ी जानकारी आपसे साझा करूंगा मस्त मुंबई इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले तीन बैक टू बैक हिट सॉन्ग एफएम रेनबो पर, बने रहिए दिल से दिल तक।

हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
3: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मस्त मुंबई में हमारे और भी कुछ नए लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। नए लिसनर मतलब इस कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं, या फिर जो पहले से ही कार्यक्रम में जुड़े हैं लेकिन संदेश या मैसेज उन्होंने थोड़ी देर पहले हमें किया है। विक्रम आठोले है जिनका संदेश कुछ देर पहले आया है। फिरोज भाई है हमारे पुराने और रेगुलर लिसनर है। सिद्धार्थ मोराजकर है, उनका संदेश भी आया है और उन्होंने गुड मॉर्निंग का संदेश हम तक भेजा है। इसके बाद स्वास्तिक गारड है जिन्होंने लातूर से हम तक ये संदेश भेजा है। रजनीकांत पाटिल है, रजनीकांत पाटिल वाढ़वन से उनका संदेश हम तक आया है। और भी कई सारे लोगों ने संदेश भेजे हैं जिसमें राम प्रजापति है, प्रदीप अनंत कृष्णन, इनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ, और दत्तात्रेय अड़ात बेलापुर से उन्होंने संदेश हम तक भेजा है। विक्रम आठोले के साथ विद्या आठोले ने भी

मीरज से संदेश हम तक भेजा है प्रमोद चिंचोलकर, उनका संदेश भी हम तक पहुंचा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू मैडम का संदेश है, अंधेरी इस से बड़े ही हमेशा उत्साह में रहती है। उन्हीं की तरह वैद्य ही मैडम नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी रहती है। अगर उत्साह की बात करें तो बाबा जो है वो दादर से हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं। वेल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आपका साथ जब भी बना रहता है तो कार्यक्रम की रंगत और मज़ा और भी बढ़ जाता है। मुंबई की कुछ बातें आपसे कर रहा हूँ। मुंबई के बारे में नाना शंकर शेठ जो जिन्होंने मुंबई को आकार देने में, मुंबई की उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे जुड़ी बातें आपसे जारी है। नाना शंकर शेठ ने जे हॉस्पिटल के साथ साथ मुंबई में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भाईखला का रानीबाग या फिर मेडिकल ग्रैंड कॉलेज, ये सारी वास्तुएं जो या फिर ये सारी संस्थाएं आप देखते हैं आज मुंबई में, उन्हें उन संस्थाओं के लिए, उन वास्तुओं के लिए जमीन और धन देकर ये संस्थाएं नाना शंकर शेठ इन्होंने शुरू करवाई थी। डॉक्टर आचार्य अत्रे जो है उन्हें मुंबई का सम्राट कहा करते थे, क्योंकि एक जमाने में आधी मुंबई के मालिक थे श्री जगन्नाथ शंकर शेठ मुरकुटे यानी नाना शेठ। उनकी स्मृति में मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को, मुंबई रेलवे स्टेशन सेंटर जो मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है आप सभी जानते हैं, उनकी स्मृति में उस स्टेशन को नाना शंकर शेठ टर्मिनल्स के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई के इस शिल्पकार को नमन और उनकी इन प्रयासों से और उनके इन इस योगदान से, इस बहुमूल्य योगदान से आज हम ये प्रगति पर जो मुंबई है वो देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में मनोरंजन का सिलसिला एफएम रेनबो पर यूं ही चलता रहेगा। सो स्टे ट्यून एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र।

कुमार सानू की आवाज है, सावन कुमार ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का ये ब्यूटीफुल सा कंपोजिशन, फिल्म है कहो ना प्यार है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10:46 हो चुके हैं। मैं हूं शैलेंद्र। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। समाचार में आगे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा है कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के उस फैसले के बाद शुरू हुई जिसमें 2020 में उनके फार्म हाउस से भारी मात्रा में अघोषित अमेरिकी डॉलर की चोरी हुई थी। और समाचार के अंत में मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच अगले 2 दिन में असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश हो सकती है। ये थी इस घंटे की

की सुर्खियां एफएम रेनबो पर अगला कार्यक्रम है नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

0: बापू आ गायन तो जबरदस्त हिट छे।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गाना तो जबरदस्त हिट छे और ये कार्यक्रम भी जो है वो बिल्कुल हिट है। मस्त मुंबई के बाद नए कार्यक्रम की शुरुआत, नए कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। नमस्ते भारत कार्यक्रम, और नमस्ते भारत कार्यक्रम में आज मंगलवार के दिन रहता है भारत हमको जान से प्यारा है, जहां आज बात करते हैं, जाहिर सी बात है नमस्ते भारत कार्यक्रम और भारत हमको जान से प्यारा है। इन इस टाइटल को अगर आप देखें तो बातें हमारे देश की, हमारे भारत की ही होनी चाहिए, और वही बातें हम करेंगे इस कार्यक्रम में। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल का उपयोग संभाल कर करने की अपील सभी देशवासियों को की है, और साथ ही साथ हमारे लोकल टू वोकल यानी हमारे देसी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी की है। और अगर हम सभी ऐसा करते हैं, हम सभी अपना थोड़ा थोड़ा योगदान और इन चीजों को अपनाते हैं, तो देश की प्रगति के साथ साथ सुरक्षा और हमारी ये युद्ध स्थिति में जो चीजें पॉजिटिव सकारात्मक वे से आगे बढ़नी चाहिए, उससे भी बहुत फायदा होगा। तो सभी को अपील है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सभी को अपील की है, उनका पालन जरूर करें। इराक और अमेरिका युद्ध के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के स्तर पर कई बातें हुई है, उन्हीं में से ये एक बात है। भारत हमको जान से प्यारा है, इस पर, इस विषय पर थोड़ी और कुछ बातें करेंगे। बने रहिए आपकी और मेरी बातें और कुछ प्यारे से नगमे एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो है म्यूजिकली योर्स।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अरिजीत सिंह और परंपरा ठाकुर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे, पल पल दिल के पास। इस फिल्म में पल पल दिल के पास फिल्म का ये टाइटल ट्रैक और कार्यक्रम है भारत हमको जान से प्यारा है। फिलहाल जो स्थितियां या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो सबसे अपील की है उसी को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत ने कई पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। सबसे पहले इन्हीं इसी स्थिति को लेकर कुछ बातें आपसे साझा कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो भारत आधिकारिक तौर पर युद्ध में किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है, वो किसी के भी साथ नहीं है, लेकिन तनाव कम करने और होमरूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित व्यापारिक आवाजाही के लिए अपने तरीके से कूटनीतिक प्रयास जरूर कर रहा है। भारतीय नौसेना ये जो जल डमरू जलमार्ग है, इस जलमार्ग पर भारतीय नौसेना ने भी इसके लिए कुछ इंतजाम किया है और इसमें साथ साथ कूटनीति के साथ साथ सैन्य स्तर पर भी कुछ इंतजाम हुए हैं भारत की तरफ से। अब ये अलर्ट मोड भी हम इसे कह सकते हैं और इसे सुरक्षा के प्रबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि सवाल हमारी देश का, हमारे देश की सुरक्षा का है। जो अलर्ट मोड क्या क्या है वो जानेंगे, लेकिन पहले कुछ प्यारे से नगमे और साथ ही साथ कार्यक्रम में और भी कई लिसनर हमारे साथ शामिल हुए हैं उनके बारे में भी जिक्र करूंगा। कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत नगमों के बाद FM रेनबो पर दिल से दिल तक।

बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और एआर रहमान इस गीत को गा रहे हैं। गुलजार साहब के लिखे बोल और एआर रहमान साहब ने इसे कंपोज किया है। फिल्म है युवराज।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
4: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अबे जोधपुर कर की खूबसूरत आवाज में आपने ये गीत सुना फिल्म जीरो से। वैसे अबे जोधपुर कर की आवाज जो है वो आपको हल्का सा यशुदास जी के आवाज की याद दिलाती है। खैर मुझे ऐसा लगा, अगर आप ने थोड़ा गौर से सुना तो आपको वो फाल वाली फीलिंग भी जरूर आ सकती है। पहले इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और अजय अतुल साहब का वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन। 10:36 का समय हो चुका है। कार्यक्रम नमस्ते भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आपके संदेश जो है वो कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाते हैं और साथ ही साथ आपके कुछ गीत जो आप हम तक पहुंचाते हैं, ये सभी बातें मुझे और भी कार्यक्रम अच्छा करने के लिए इंस्पायर करती है। कुछ नए लिसनर्स ने हम तक अपने संदेश भेजे हैं। पंकज मोहाड़ है अमरावती से, स्नेहा इन्होंने वर्ली से हम तक संदेश भेजा है, कह रही है कि नमस्ते भारत कार्यक्रम की शुरुआत उन्हें बहुत अच्छी लगी है और गाने भी उन्हें पसंद आ रहे हैं। श्रेया राउत है, नीलेश राउत है, महेश बोहरा राजस्थान से उनका संदेश हम तक पहुंचा है, कहते हैं कि कार्यक्रम वो अपने राजस्थान के शहर में एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ ये महेंद्र देपन है, उन्होंने भी अपना संदेश भेजा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में मेरा साथ देने के लिए। कार्यक्रम में और भी कुछ खूबसूरत से नगमे आपके लिए लेकर आया हूँ, बने रहिए मेरे यानी आरजे शैलेंद्र के साथ। जल्द ही लौट कर आऊँगा इन खूबसूरत नगमों के बाद।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे। मुझे हमेशा आपका इंतजार रहता है, आपसे मिलने का इंतजार रहता है, आपसे बातें होती है, आपके साथ कुछ विचार साझा होते हैं और आपकी फरमाइशें भी जो है वो प्ले कर लेता हूँ। तो ये इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं 14 तारीख को 11 बजे फिर आपसे मिलने आऊँगा। 10:52 का समय हो चुका है। मैं आरजे शैलेंद्र, घड़ी के इस मुताबिक मेरा यहाँ से जाने का वक्त जो है वो हो चुका है। और मैं जब भी जाता हूँ आप सभी लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को उसका सच्चा प्यार मिले और वो बहुत बहुत खुश रहे। आप सभी लोग अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, उनके साथ समय बिताएं जिनके साथ आपको समय का पता नहीं चलता। मेरी और आपकी मुलाकात जैसे कि मैंने बताया 14 तारीख को फिर से सुबह 11 बजे होगी ही। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप लविंग FM रेनबो एंड लव मी टू। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 11:34 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर द्वारा दादर में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस को 2016 में ढहाए जाने के तौर तरीकों पर हैरानी जताई है और इस कदम के खिलाफ शिकायतों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए शहर की पुलिस को फटकार लगाई है। मुख्य समाचारों में आगे, तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों ने के एक अन्य समूह ने ईडापड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्य समाचारों के अंत में, अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने और अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगले कार्यक्रम ब्रेक फ्री के लिए बने रहे 107.1 एफएम रेनबो पर।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

दोस्तों, दो दिन पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया। सभी ने अपने परिवार की माओं को खूब तारीफें की, उनकी सराहना की। पर आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में स्त्रियों को चार दीवारों के बाहर की दुनिया में अपना कुछ कर दिखाने की अनुमति नहीं है। उसे अक्सर इन्हीं संस्कारों के साथ बड़ा किया जाता है, जिस वजह से उसकी सोच तक घर के दहलीज को नहीं लांग पाती। ऐसे में जब किसी विपदा का सामना होता है, तब वो जिसे बड़ा किया गया चार दीवारों के भीतर के जीवन के लिए, वो कैसे किसी मुश्किल का सामना कर पाएगी। ऐसी चीजों के बावजूद हमें समय समय पर ऐसी महिलाओं के बारे में सुनने को मिलता है, जिन्होंने संकट के समय बिना हिम्मत हारे खड़े होकर समाज के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर, या समाज के डर से परे होकर रुकावटों से ब्रेक फ्री करके अपने घर परिवार की बागडोर संभाली। आज ऐसी ही एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ब्रेक फ्री में बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आरजे रॉबिन। सुनते रहे, बने रहे 107.1 FM रेनबो पर। हर कैद, हर पिंजरे, हर मजबूरी को तोड़कर बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए जीना, खुल के जीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
0: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
0: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
0: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
0: कॉस्मॉस रूपे और वीजा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ। आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। ब्रेक फ्री चल रहा है और बात हम कर रहे हैं एक सच्ची कहानी की, उस स्त्री की, उस महिला की जिसे बड़ा ही किया गया था घर गृहस्थी संभालने के लिए। हरियाणा की अन्नू माता पिता घर परिवार के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रही थी। उसके गांव वालों और घर वालों को लगता था कि स्त्रियों का जीवन घर के चार दीवारी में ही होता है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था और फिर कुछ यूं हुआ जिसके बारे में उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। एक सड़क दुर्घटना में उसके पति का पैर कट गया और उसे कई ऑपरेशंस करवाने पड़े। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था और कमाने वाला कोई नहीं था। 40 लाख रुपए खर्च हो चुके थे उसके इलाज पर और अब भी पैसों की जरूरत लगातार बनी हुई थी। जो जितनी सहायता कर सकते थे कर चुके थे, अब दोस्त रिश्तेदार भी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। ऐसे में अनु ने क्या किया ये आप जरूर जानना चाहेंगे। वो अनु जो पता नहीं कितनी पढ़ी थी, शायद सिर्फ मात्र साक्षर थी, जिसे पता ही नहीं था बाहर की दुनिया में क्या है, क्योंकि घूंघट के आगे उसे देखने की अनुमति ही कहां थी।

क्या किया उस अन्नू ने, जानने के लिए बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

107.1 FM रेनबो पर ब्रेक फ्री चल रहा है और आप सभी को सुनवा रही हूं मैं हरियाणा के अन्नू की कहानी। दोस्तों, जब इतनी मुसीबतों का पहाड़, इतने सारे मुसीबतें जब उस पर आ गिरे, क्या किया उसने? क्योंकि वही एक थी ना जिसको करना था, करने वाला तो कोई था नहीं। उसके पति का पांव जो है कट गया था एक्सीडेंट में, तो ऐसे में अनु ने बहुत सोचा क्या कर सकती है वो, क्या वो चीजें हैं जो उसको आती हैं। और उसने पाया कि बहुत ही कम था जो उसको आता था, उसको बस घर गृहस्थी संभालना, खाना बनाना, यही तो आता था। हाँ, आता था उसे, खाना बनाना आता था उसे। देखो, बात ऐसी थी कि अनु को पैसा कमाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कि क्या वो चीजें हैं जो वो कर सकती हैं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि क्या करें वो, क्योंकि घर की देखभाल से कभी बाहर देखने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में उसने वो किया जो उसको आता था, हाँ, जो बचपन से देखा था, सीखा भी था। अनु देसी घी के लड्डू बनाकर बेचने लगी। लोगों ने कहा, ये क्या कर रही है, अरे अब तो बिजनेस करेगी ये, नाक कटवाएगी हमारा। पर अनु के सर पर घर का खर्च और परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उसके पास ना क्वालिफिकेशन था, ना जॉब थी, ना ही बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट था। उसके पास घर का देसी घी था और स्वादिष्ट लड्डू बनाने की सामग्री, और साथ ही साथ वो कला जो सबके पास नहीं होती। जब खर्चों का पहाड़ बढ़ता जा रहा था, तब उसने अपने कारोबार को शुरू किया और इस कदर अनु आगे बढ़ी अपने जीवन में। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM Rainbow. आप सभी से एक निवेदन है, भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए http://awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है 8252446702, पासवर्ड है au779#157। ये इस प्रकार से है, अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। आप सभी को ये निवेदन सुनाया गया है आकाशवाणी मुंबई की तरफ से। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो।

ब्रेक फ्री में दोस्तों हम बात कर रहे हैं अन्नु की। अन्नु गांव में बसती थी और उसे बस घर परिवार की देखरेख इतना ही आता था, लेकिन जब उसके जीवन में एक ऐसी समस्या आ गई जिसमें उसके पति की टांग कट गई, तब उसने अपने घर की बागडोर संभाल ली। अनु समझ गई थी कि उसके परिवार की किस्मत उसके हाथों में है। ठोकरे खाने से अच्छा है एक कोशिश करना, क्योंकि अगर हार भी गए तो इस बात की तसल्ली होती है कि कम से कम हमने कोशिश तो की। और यही सोचकर अनु ने अपना कारोबार शुरू किया। अब वो सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि अचार और मसालों का कारोबार भी करती है। उसके हाथों बने प्रोडक्ट्स देश विदेश में बिकते हैं और हाथों हाथ बिकते हैं। आज अनु 2 लाख प्रति माह कमाती है और किसी भी अच्छे कॉरपोरेट जॉब की सैलरी जितना है। ये सोचिए, गांव में रहने वाली अनु इतना बना लेती है और जो सारी उसकी तकलीफें हैं उन सभी को एक एक करके वो मैनेज कर रही है।

हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इसी पर अनु रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। और अब अनु का मार्केट में इतना अच्छा और बड़ा नाम बन चुका है कि वो मुड़कर नहीं देखेगी कभी भी। कुछ ज्यादा ना भी हो तब भी वो कम से कम 2 लाख तो बना ही लेगी, है ना? आपको क्या लगता है और क्या लगा अनु की कहानी सुनकर, बताइए हमें। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 8657-661071 और लैंडलाइन पर कॉल्स करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 4515-4132-4515-4133। बताइएगा जरूर कॉल करके कि आप क्या सोचते हैं। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: कभी लगता दूर है
4: ये दूरियां,
5: तो कभी लगता पास है।
4: मेरे, मेरे पास तो
6: रंगों में न जाने क्या बात है।
4: पल पल रंगते रंगते रंगते रंगते
5: दिल झूम उठा है अचानक ऐसे,
3: जैसे कोई हर वक्त दिल के पास है।
7: ये मजा रंगों का है, सुमधुर गीतों का है,
5: क्योंकि ये है आपका अपना
6: 107.1 FM रेनबो, दिल से
5: दिल तक।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। ब्रेक फ्री में बातें हम कर रहे थे अनु के जज्बे की, किस कदर उसने, हालांकि वो बड़ी की गई थी बस घर गृहस्थी संभालने के लिए, उसने सोचा बहुत गहराई से क्योंकि मदद मिलना बंद हो गया था। सभी की एक लिमिट होती है, सबके पास उतना पैसा नहीं होता कि आपको लगातार वो मदद कर सके, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अपने लिए खड़ा रहना पड़ता है। और अन्नू ने भी वही किया, उसने लड्डू बनाने का बिजनेस शुरू किया। और आप सभी से मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है अन्नू की इस कहानी के बारे में, उसने जो किया उसको करना पड़ा। तो मुझे कॉल आया था संजय दर्शन जी का मलाड से, और वो कहते हैं कि देखो, अगर इंसान जो है कोशिश करे, हिम्मत करे, तो चीज़ें हो ही जाती हैं, बस करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर कुछ भी सही करना चाहें तो वो ना हो, बाकी तो खैर चीजें हो जाती है, ईश्वर देख लेते हैं। पंकज मोहड़ जी ने भी हमें मैसेज किया है, ये कहते हैं कि अन्नू की कहानी बहुत अच्छी लगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो काम आपको जीवन जीने में मदद करे और खुद को आत्मनिर्भर बनाए, वो काम बेझिझक करना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, और लड्डू आचार का बिजनेस तो अच्छा ही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और संजय दर्शन जी ने भी कई सारी बातें हमसे साझा की इसी बारे में। उन्होंने कहा कि करने की जरूरत होती है, काम हो जाते हैं, बस आपको उठ खड़ा होकर करना है। आप सभी श्रोताओं के मैसेजेस हमें आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रजनीकांत पाटिल जी का वाडवंड से मुझे मैसेज आया है, आपका धन्यवाद। प्रमोद चिंचोलकर जी हमें मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना दिल से हमें वेलकम किया है। स्नेहा वर्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और बाबा दादर से श्रेय राउत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणव शिंदे, इन्होंने लिखा है हमको, कुछ बातें लिखी है, उन्होंने लिखा है कि अन्नू ने संघर्ष के समय में कभी हार नहीं मानी और संघर्ष करती रही, फिर उसकी मेहनत रंग लाई, और बहुत ही खूबसूरत लगी उनको ये कहानी। और आप सभी को बता दूं कि ये सच्ची कहानी है, अनु नाम की स्त्री रहती है हरियाणा में। और स्मिता पालकर, इनका भी मैसेज आया है हमें, और ये लिखती है कि कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, कितनी भी कठिनाइयां आए, स्त्रियों को कठिनाइयों का सामना बहुत ही सकारात्मक रूप से करना चाहिए तो कामयाबी मिल जाएगी। डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से लिखती है कि उसमें हिम्मत थी और उसने मेहनत की और उसका नतीजा फल उसको मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमें जो है अशोक पाटिल जी वर्ली कोलीवाड़ा से लिख भेजते हैं कि बहुत अच्छी लगी कहानी, धन्यवाद। विजेंद्र घाटोल जी अकोला से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बढ़िया लगी उनको कहानी अन्नू की और बहुत इंस्पायरिंग थी। राम प्रजापति जी लिखते हैं, अन्नू को सल्यूट करते हैं, वसई से हमें मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज जिगनपोरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं गानों को और शो को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूं ही बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें और सुनते रहें 107.1 एफएम रेनबो। यहाँ पर हमारे साथ जो है अवधेश मौर्य जौनपुर से भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। यूं ही बने रहें, कुछ और गाने हम आपको सुनवाएंगे जिसके बाद दोपहर के 12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, जिसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू। देखिए दोस्तों, आप सभी से कुछ देर के लिए जुदा होने से पहले बस ये भी कहना चाहती हूँ कि अनु जैसी महिलाएं सिर्फ पत्नी नहीं होती, सिर्फ बेटी बहू नहीं होती, वो माँ भी होती है। मातृ दिन हमने मनाया, और माँ को हम इतना महान क्यों मानते हैं, क्योंकि शायद पिता घर संभाल पाए ना संभाल पाए, लेकिन माँ जो है कारोबार, घर गृहस्थी सब कुछ संभाल लेती है। आजकल के जो पिता है उनकी कोशिशें वाकई सराखों पर है, क्योंकि ऐसे कितने ही पिता हैं जो कोशिश कर रहे हैं घर भी संभाले, बच्चों को बड़ा करे और बाहर का काम काज भी करे, उन पिता को भी नमन है। तो चलिए, माँ की बात कर रहे थे, स्त्री की बात कर रहे हैं, स्त्री शक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक गाना माँ के नाम, क्योंकि मदर्स डे अभी बस 2 दिन पहले गया है, लेकिन माँ का काम कभी खत्म नहीं होता है ना।

0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी गई अपनी कार्यकारिणी सूची में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे के नाम नहीं हैं। 29 अप्रैल को भेजी गई इस सूची में महासचिव के रूप में पार्थ पवार और सचिव के रूप में जय पवार के नाम शामिल हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य की उप मुख्यमंत्री सुनीता पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि इस सूची में लिप किए गलती हुई है और जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा। अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ विधायकों एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले धड़े ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले तमिलगा वेत्री कशगम सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। षणमुगम ने पत्रकारों से कहा कि वे आज दोपहर मुख्यमंत्री विजय से मिलकर उनकी सरकार को समर्थन देने के लिए पत्र सौंपेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी महासचिव एड पार्टीन के पालिनी स्वामी सरकार बनाने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कशगम को समर्थन देना चाहते थे। फ्रेंच रिवेरा में स्वतंत्र सिनेमा का वार्षिक उत्सव कांस फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जॉन ट्रेवोल्टा, एडम ड्राइवर और बारबरा स्ट्रीसैंड सहित कई सुपरस्टार रेड कारपेट पर नजर आएंगे। कांस दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। सबसे पहले 1939 में वेनिस फिल्म महोत्सव के विकल्प के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया और आज शाम गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि उन्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं इंतजार करना किसी को भी पसंद नहीं होता, पर करना तो पड़ता है। चीजें, लोग हमारे मुताबिक हों ऐसा जरूरी नहीं। इनफैक्ट ऐसा कई बार होता है कि हर जगह जो हमें तुरंत मिलता है वो होता है लंबा इंतजार। आज क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में रॉबिन मौजूद है, हमारी बातें चल रही हैं और मैं भाई पहले उसका स्वागत तो कर लूं। हाय रॉबिन, तुम्हारा स्वागत है।
0: शुक्रिया वैशाली।
2: और आज हम पहली बार शो कर रहे हैं, साथ में इतनी बातें हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है?
0: बहुत मजा है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, जो भी मुझे हमें सुन रहे हैं अभी, सारे लिसनर्स को मेरा नमस्कार।
2: क्या बात है। तो भाई आज रॉबिन मेरे साथ है और मैंने वही उसे कहा कि भाई इंतजार, देखो जैसे उसे भी इंतजार करना पड़ा 1 घंटे और अभी वो मेरे साथ जुड़ चुका है। तो भाई इंतजार पर बातें होंगी, लेकिन लाएंगे हम उसको एक ट्विस्ट के साथ। तो भाई एक गाने को आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद बताएंगे हम आपको, है ना रॉबिन?
0: बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा वैशाली।
2: बिल्कुल, आज करो।
0: इंतजार कभी आसान नहीं होता है, लेकिन शायद इसी इंतजार में कुछ खूबसूरत कहानियां, कुछ यादें और कुछ खास लोग मिल जाते हैं। तो आज इसी इंतजार की बातें करेंगे, थोड़ी मुस्कुराहट और शानदार म्यूजिक के साथ।
2: क्या बात है। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। दोस्तों आप सुन रहे हैं हमें म्यूजिक कैफे में, मैं वैशाली
1: और मैं हूँ रॉबिन।
0: और हम साथ साथ आप सभी को कुछ ट्विस्ट वाली बातें यहाँ पर सुनाने वाले हैं। यानी कि सुनाना क्या है भाई, यहाँ पर हम इंजॉय करने वाले हैं और बहुत सारी गपशप होने वाली है। तो रॉबिन, इंतजार एक ऐसा एहसास है जो घड़ी की सुइयों को भी धीमा कर देता है। जब हम किसी का इंतजार करते हैं, किसी सफर का इंतजार, किसी मुलाकात का इंतजार या किसी नई शुरुआत का, तब हर मिनट थोड़ा लंबा लगने लगता है। और खासकर जब हमें जल्दी होती है तो ऐसा लगता है कि समय बीत रहा है और भाई कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा होता है क्या? तुम्हें क्या लगता है, इंतजार कैसा लगता है?
1: हाँ, मुझे भी लगता है इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, फीलिंग्स का भी होता है। कभी किसी के संदेश का, कभी किसी के कॉल का, और कभी उस पल का जब सब कुछ ठीक हो जाए। अजीब बात यह है कि जब हम खुश होते हैं तो समय जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इंतजार में लगता है कि समय रुक सा गया है।
0: सच्ची।
1: शायद इसीलिए हर इंतजार हमें धैर्य भी सिखाता है ना?
0: हाँ, बिल्कुल। और भाई इसमें ट्विस्ट क्या है, लोग सोचेंगे।
1: हाँ।
0: तो वही बता दे उनको। देखो दोस्तों कि हम जब वक्त काटने के लिए यहाँ वहाँ बैठे होते हैं ना, है ना?
1: हाँ।
0: रॉबिन, जैसे तुम भी कहीं ना कहीं इंतजार करते हो और किसी ना किसी का, तो तब हमें जो आसपास दिखता है वो हम देखकर इंजॉय करते हैं।
1: हाँ।
0: है ना, जो नजारा होता है उसके बैकग्राउंड में फर्ज करो, अगर कोई संगीत या गाना प्ले करना हो, या फिर तुमने ईयरफोन्स पहन रखी और कोई गाना ऐसा मजेदार सा अचानक से बजने लगे और सामने नजारा भी कुछ ऐसा ही बहुत कमाल का हो, दिलचस्प हो, तो कौन सा होगा ये सोचना चाहिए, है ना? अगर वेटिंग रूम्स, प्लेटफॉर्म्स और एयरपोर्ट्स की खामोशी या शोर, एक्टिविटी या शांति के पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक अगर बजता तो वो कौन सा होता? अगर हर कहानी का अपना एक गाना होता तो चलो एक गेम खेलते हैं। मान लो, हाँ रॉबिन,
1: हाँ।
0: कि तुम ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हो और पॉकेट मार आ गया वहां पर और जेब मार के भाग रहा है, और उसके पीछे बाद 5-6 लोग दौड़ पड़े हैं उसे पकड़ने।
1: हाँ।
0: तो कौन सा गाना बजेगा उसके पीछे?
1: अच्छा, तो लेट मी थिंक कि अच्छा। हाँ। तो उस पूरे सीन के लिए ना, मैं मेरे लिए, मेरे दिमाग में गाना आया है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ये गाना बिल्कुल सही बैठेगा।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि वो जो चोर भाग रहा है ना, वो पूरे प्लेटफॉर्म में सच में गोलमाल हो जाता है।
0: हाँ।
1: कोई दौड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बस देख रहा है कि क्या हो क्या रहा है ये।
0: क्या बात है, और अब मेरे जहन में आ रहा है भागम भाग, पता है क्यों?
1: हाँ।
0: क्योंकि भाग रहे सब और किसी को पता नहीं भाग क्यों रहे भाई। देखो अक्सर ऐसा होता है, रोड पर हम देखते हैं कि किसी भी क्रिमिनल को या चोर को, पॉकेट मार को लोग पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, हमें बस दिखते हैं कि लोग भाग रहे, क्यों भाग रहे और चिल्ला रहे, क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ
1: रहा है,
0: वो कंफ्यूजन के लिए भागम भाग। और फिर बिल्कुल गोलमाल।
1: कुछ कुछ लोग तो ना उसको, मतलब वो देखते हैं, वो एंजॉय करते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है।
0: हाँ, एकदम से उठ खड़े होते हैं और वीडियो भी लेने लगते हैं।
1: हाँ, आजकल तो रील बनाते हैं ना। हाँ, तो उसको अपलोड कर देंगे वो लोग।
0: क्या बात है, और वायरल होने का ये तरीका अच्छा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अपने लिसनर्स को वही भागम भाग वाले कंफ्यूजन की फीलिंग दिलाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हालांकि यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ साफ है, आपको गाने सुनाना है, एंटरटेन करना है। सुनते रहिए, बने रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेगाच्या वेडानं पाखरू गडप होतं, एका चुकीमुळे आयुष्य दूर जातं। मद्यपान करून गाडी नको रे धरू, आई बाबांची स्वप्न नको भंग करू। झेब्रा पट्टीवर थांब रे जरा, आपलेच लोक वाट पाहती घरा। जीवन अनमोल आहे, वेग टाळा, सुरक्षित प्रवास हाच खरा।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो म्यूजिक कैफे चल रहा है। रॉबिन और वैशाली आपके साथ बने हुए हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: और रॉबिन बहुत मजेदार बातें हुई और कितनी सारी चीजें याद कर करके हम पेट पकड़ के हंसे हैं।
1: अभी तो मुझे बहुत हंसी आई थी, आप इतना ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि खूब हंसी आ रही है मुझे।
0: नहीं मुझे भी बहुत मजा आ रहा है और बिल्कुल ये सारी फनी चीजें याद करके अरे भाई किसे हंसी नहीं आएगी। अब देखो ना ये सारी मजेदार बातें चल रही है और हम चलो गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यार ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजें बड़ी दिखाई देती है यार रोड पर, फिर वो मंदिर हो गार्डन हो कहीं भी हम इंतजार कर रहे होते ना। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि बस थोड़ी सी छांव में बैठ जाते हैं, कभी कहीं पानी पीने चले जाते हैं या ऐसे ही वही टहल रहे होते हैं इंतजार में, तब हमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हमें बहुत सारी चीजें दिखती है। तो ऐसे में मान लो कि बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का कहीं और चक्कर चल रहा है और भाई पकड़ लिया उसके पार्टनर ने है और कैफे में आप दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, वहां आपने देख लिया कि भाई झगड़ा चल रहा है और बिना चीखे चिल्लाया, वो झगड़े अलग ही होते हैं ना, बहुत ही मजेदार होते हैं। तो भाई दोस्त का इंतजार करते करते ऐसे कोई ना कोई सीन तो देखने मिल जाता है या तो फिर मॉल में, तो इस सीन के बैकग्राउंड में कौन सा गाना तुम इमेजिन करोगे?
1: बिल्कुल, मैं तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बेचारा बॉयफ्रेंड है उसकी क्या हालत हो रही होगी जब पकड़ा गया। तो देखिए तो इस सीन में के लिए मैं एक गाना है सुखविंदर सिंह जी का डाउटुआ।
0: अरे वाह क्या बात।
1: तो ये गाना बिल्कुल सही बैठेगा।
0: हाँ हाँ एकदम, क्योंकि डाउट है ना भाई।
1: बिल्कुल डाउट।
0: और वो जो रवि किशन होते हैं वो घूम रहे होते हैं लेकर भाई देखने के लिए भाई क्रिमिनल है कौन गुनहगार पकड़ने के लिए। तो ये मस्त है, जैसे कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर का पीछा करते हुए कहीं छुप छुपा कर वो सारी चीजें होने के बाद फिर जब उसका बोलते ना पर्दाफाश होता है कि भाई यार
1: राज पता चलता है। ये गाना प्ले करते हैं, है ना?
0: चलो सुनते हैं ये गाना, आप बने रहे सुनते रहे 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे और अभी टाइम हो रहा है 12:44 और वैशाली आप वैसे काफी मजा आ रहा है जो हम गाने प्ले कर रहे हैं है ना तो मेरे पास भी एक सीन है।
2: अरे बताओ बताओ।
1: अगर आप उसमें कुछ कौन सा गाना प्ले करेंगे तो क्या मैं आपसे पूछूं कि
2: हाँ बिल्कुल।
1: अच्छा तो आप इमेजिन करिए कि आप मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं होटल ताज की लॉबी में
2: जी हाँ हाँ
1: और आप देखते हो कि दो दोस्त लंच कर रहे हैं और हाई फाई खाना ऑर्डर किया उन्होंने लेकिन जैसे ही बिल आता है तो वो एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उनके पास वॉलेट ही नहीं है।
2: अरे बाप
1: तो अब बताइए कि इस सीन के बैकग्राउंड में कौन सा गाना इमेजिन करेंगे आप।
2: हाय हाय हाय हाय अभी इतने गाने तो हमने चुन रखे हैं मैं वही देख रही हूँ अगर सच कहूँ तो कि कौन सा उस पर फिट जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों की ओके और फिर जो एक कॉमिकल सीन हो जाता है दो दोस्तों के बीच में तो मुझे लगता है ऐ शिवानी मजेदार रहेगा तो लगती है नानी थोड़ी सी टांग खिंचाई और वो सारी चीजें और जूस के दुकान पे तू पीती है पानी ये वाली जो है ना मुझे लगता है ये जाएगा उसमें है और क्योंकि दोनों का पोपट हो गया भाई बेचारे। और फिर देखो कितने सारे गाने हमारे मिक्का पाजी ने एक से बढ़कर एक कॉमेडी गाने दिए तो कुछ गाने हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को भी और ये बहुत ही फनी होने वाला है तो सभी से मैं यही कहूंगी कि बने रहे सुनते रहे 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। बिल्कुल।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या क्या क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। आप सभी से एक निवेदन है, भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए http://awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है कैपिटल लेटर ए 2524467042 और पासवर्ड है कैपिटल ए स्मॉल यू 779#157। ये इस प्रकार है, अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। आप सभी से ये निवेदन आकाशवाणी मुंबई केंद्र द्वारा की जा रही है।
1: तो वैशाली, एक सीन मुझे और याद आ रहा है, क्या मैं बताऊं आपको?
0: हाँ बिल्कुल, म्यूजिक कैफे में हम भाई ये सारी फनी बातें कर रहे हैं आज, है ना?
1: क्योंकि अभी तक बहुत सारी फनी बातें हुई, तो एक और सीन फनी सीन है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक लड़की जो है वो कहीं जा रही होती है।
0: अच्छा।
1: और बड़ी खूबसूरत भी है वो लड़की।
0: अरे वाह।
1: तो क्योंकि खूबसूरत है तो फिर कुछ लड़के कुछ गुंडे उसको छेड़ते हैं। तो पीछे खड़ा एक लड़का है, वो भी बड़ा हैंडसम है और बॉडी बॉडी बनाया है, जिम वाली बॉडी है। तो वो जाता है, उसको लगता है कि चलो इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो इसको ये मतलब इसको मैं प्रपोज भी कर सकता हूँ। उसको मतलब पहली उसको मतलब देखते ही प्यार हो गया उसको। तो वो जाता है उधर और सारे गुंडों को भगाता है और फिर उनसे बात करता है। लेकिन फिर पता है बदले में वो लड़की क्या बोलती है? वो बोलती है थैंक यू भैया। तो अब आप बताइए कि इस सीन में, इस फनी सीन में कौन सा गाना फिट बैठेगा?
0: अरे भाई इतना अत्याचार हो रहा है बेचारे पर, तो और कौन सा होगा? वही तो इमोशनल अत्याचार। तो भाई इमोशनल अत्याचार हम सभी के लिए प्ले करें। उससे पहले रॉबिन, जाते जाते मैं हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल बोलिए।
0: देखिए दोस्तों, हमने तो आज ये साबित कर ही दिया कि इंतजार सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, इंतजार मुस्कुराने का भी बहाना बन सकता है। इंतजार के पलों को भारी नहीं हल्का रखिए, उनमें थोड़ी शरारत, थोड़ा ह्यूमर और थोड़ा संगीत घोल दीजिए। क्योंकि जिंदगी में अगर संगीत हो, किसी भी जगह आप हो, ह्यूमर हो, तो भाई अपना साथी अगर इन सारी चीजों को बना ले तो लंबे से लंबा इंतजार भी कहानी बन जाता है और थका देने वाला सफर या इंतजार भी यादगार लगने लगता है ना रॉबिन?
1: वाह वैशाली, क्या बात बोली आपने।
0: हाँ बिल्कुल, और मैं बताना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं को कि ठीक 1 बजे वो सुन सकेंगे समाचार और फिर 1:05 से होगा हिट एंड हॉट शुरू। तो आप सभी बने रहें, सुनते रहे। और रॉबिन
1: जी,
0: इमोशनल अत्याचार को थोड़ा महसूस कर ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ कि बेचारा उस लड़के का क्या हाल हो रहा होगा जिसको थैंक यू भैया बोल दिया उसने।
0: वही हाल बेहाल बुरा हाल, और ये गाना बिल्कुल उस इमोशन को व्यक्त करता है।

0: शो का आप वेट कर रहे थे हिट एंड हॉट, तो अभी वो शुरू होने वाला है और अपने पसंद के गाने आप हमें भेजें और हम एक एक करके उसको प्ले करेंगे। तो सबसे पहले जो गाना हम प्ले करने वाले हैं उसका नाम है फूल जैसा मुस्कान, और ये जो गाने की चॉइस है ये हमें भेजी है प्रणव शिंदे जी ने, और वो काफ़ी कुछ लिखते भी हैं। उन्होंने एक शायरी भी लिखी है कि वक्त थमता नहीं मगर ठहरता जाता है, जब किसी का इंतज़ार हद से गुजर जाता है। अजीब कश्मकश है इस मोहब्बत की राह में, सुकून मिलता नहीं और इंतज़ार जाता नहीं। उन्हें भी तो पता चले कि इंतज़ार क्या है, कोई उनकी नींद उड़ा दे हमारे नाम से। क्या बात है प्रणव जी। तो चलिए हम आपका ये गाना प्ले करते हैं।
1: और रॉबिन, पता है हमें जो है मैसेज आया, अय्याज चौधरी इनका कॉल आया है हमें।
0: हाँ।
1: और उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, अन्नू की कहानी उनको अच्छी लगी, और उन्होंने लिखा कि संयम की भी जरूरत होती है। हमने कई सारे क्वालिटीज की बात की, तो उसमें से एक क्वालिटी उनका मानना है कि संयम भी है
0: जी।
1: और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रणव शिंदे, इन्होंने और भी कुछ लिख भेजा है
0: जी।
1: कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं ये?
0: ये है फिल्म तकदीर वाला।
1: ओके।
0: और फूल फूल जैसी मुस्कान, और ये लिखते हैं कि
1: आज ही के दिन ये रिलीज हुई,
0: ये 12 मई के आज ही के दिन ये हुई थी रिलीज, 20 साल पहले।
1: वाह क्या बात है।
0: तो चलिए ये गाना अब प्ले करते हैं।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। शुभदा जी ने रिक्वेस्ट की है फिल्म अनाड़ी का, महेश बोहरा ने जी ने भी भेजा है मैसेज, और प्रदीप, अनंता कृष्णन, प्रमोद चिंचोलकर, संजय दर्शन, सबके आ रहे हैं मैसेज। और अभी जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो है ये क्या जगह है दोस्तों, फिरोज सिगन पुरिया जी का। तो चलिए ये गाना प्ले करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो में बज रहे हैं 1:22, और अभी हम जो 3 गाने बैक टू बैक प्ले करने वाले हैं, वो रिक्वेस्ट आई है राजेंद्र परमार जी के मैसेज आए हैं, और जो गाने हम प्ले करने वाले हैं वो पंकज महोड़ जी के हैं, राम प्रजापति के गाने हैं जीने लगा हूँ, पंकज महोड़ का गाना है तुमसे ही, और प्रमोद चिंचोलकर का गाना है नौ नौ चूड़ियाँ फ्रॉम मूवी चांदनी। तो चलिए बैक टू बैक प्ले करते हैं ये 3 सॉन्ग्स।

ठीक 1:30 पे आप सुनेंगे मराठी में समाचार हमारे न्यूज स्टूडियो से, और उसके बाद हम फिर से आपसे मिलेंगे 1:40 पर। तो भेजते रहिए आपके रिक्वेस्ट और हम उसको प्ले करेंगे।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों स्टूडियो में बज रहे हैं 1:40 और प्रोग्राम चल रहा है हिट एंड हॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे और भी कुछ लिसनर हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी है गाने की। विजेंद्र घटोल जी का चॉइस का गाना है मेरे महबूब मेरे सनम, और एनएम पाटिल कुर्ला से बोल रहे हैं आपके प्यार में राज फिल्म का, और तुम से ही गाना पंकज महोर जी का। तो चलिए ये गाना प्ले करते हैं बैक टू बैक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है. और अभी जो हम गाना प्ले किए थे उसका नाम था मेरे महबूब मेरे सनम, डुप्लीकेट फिल्म का गाना था. और चलिए अब अगला गाना प्ले करते हैं जिसकी फरमाइश आई है NM पाटिल कुर्ला से, आपके प्यार में. मूवी का नाम है राज और स्मिता पालकर जी का गाना है इन लम्हों के दामन से, जोधा अकबर.
2: वाह क्या बात है, हमारे सारे श्रोताओं का दिल से धन्यवाद. रॉबिन हमारे सारे श्रोताओं का एक बार नाम हो जाए जो हमसे जुड़े हैं लेकिन हम उनका गाना नहीं प्ले कर पाए हैं.
1: जी बिल्कुल, अभी बहुत से जो हमारे जो लिसनर हैं उनका नाम मैं लेता हूँ. महेश बोहरा जी हैं, मीना जी हैं, राजेंद्र परमार जी हैं और संजय दर्शन, चेतन कुमार दिग्दर्शन और कविता, अशोक पाटिल ज्योति खटोल अकोला से हैं, प्रवीण जी हैं, अजय साखरे इंदौर से हैं, राम प्रजापति, फिरोज सिगनपुरे का गाना हमने प्ले किया है बाबा दादर से हैं.
2: वाह क्या बात है, और हमें इब्राहिम का भी कॉल आया था. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो हमसे कॉल पर जुड़े हैं. और रॉबिन और मैं आज पहली बार शो कर रहे हैं, इतना अच्छा लगा रॉबिन तुम्हारे साथ बातें करना.
1: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा
2: और यही उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा

0: आया, तो क्या कहते हमारे श्रोता, कैसा लगा उनको हमारा शो रॉबिन?
1: मुझे लगता है कि उन्होंने काफी एंजॉय किया होगा, और एक तो श्रोता है, मैं उनका नाम भूल गया, उनको मेरी आवाज काफी अच्छी लगी।
0: अरे वाह, उन्होंने बात है।
1: मैं उनका नाम पता नहीं, वो कहाँ वो चला गया मैसेज ऊपर, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उनको मेरी आवाज अच्छी लगी।
0: हाँ, और क्यों नहीं, क्योंकि आकाशवाणी तो जाना ही जाता है बहुत अच्छे इंफरटेनमेंट के लिए, अच्छी आवाजों के लिए, कलाकारी के लिए, बहुत ही बेहतरीन संगीत के लिए, और हर तरह का संगीत हमारे श्रोताओं को सुनने मिलता है। तो मैं सभी को धन्यवाद देते हुए रॉबिन अब इजाजत लेती हूँ, और जो है वो सुन सकेंगे ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज। और अब हम ले रहे हैं विदा, और अगली बार कब मुलाकात होगी ये पक्का
1: जल्द ही मुलाकात होगी। और वैशाली मुझे वो मिल गई हैं जिनका नाम है शुभदा, उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज बहुत मिठास है।
0: क्या बात है, और खैर ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है ना।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लगती है।
0: चलो इसी बात पर चलाते हैं हम आखिरी 2 गाने इस घंटे के। आप सभी से जो है हम लेते हैं विदा, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे।

0: मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। केंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोलयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों,

0: पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जाँच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: नमस्कार श्रोत्यो, शुभ दुपार। 2:31 झालेली आहेत आणि कार्यक्रम सुरू करते आहे। चला दोस्तो बोलू काही आपली रेडिओ सखी पूर्वा। श्रोते हो, उन्हाळा झालेला आहे सुरू। उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या त्या बऱ्यापैकी संपत येण्याच्या दृष्टीनं पुढे वाटचाल करत आहेत।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। शाम के ठीक 5:02 का समय है और ये समय होता है कार्यक्रम लव यू जिंदगी का। आज आपके साथ मैं हूँ शुभांगी और मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कौन है?
2: हाय, मैं हूँ उर्वशी।
1: और चलिए पहला गाना हम पहले सुनवा देते हैं और उसके बाद हमारी बातचीत रहेगी हमारे श्रोताओं के साथ।

0: आने वाला पल जाने वाला है उर्वशी, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल ये भी जाने वाला समय जो भागता रहता है, कितना खूबसूरती से इसने कहा है। वैसे जिंदगी बदलने के लिए ना उर्वशी, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत होती है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। ना मतलब एक अपनी सोच जो बहुत मायने रखती है और एक ना बड़ा दिल होना चाहिए, क्या लगता है?
1: एकदम सही बात कही आपने। सब लोग सोचते हैं ना कि बड़ी दौलत चाहिए, लेकिन सच में तो एक बड़ा दिल होना चाहिए। तो मैं ना आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनेंगी?
0: बिल्कुल।
1: तो एक छोटे से चाय वाले की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जिसने सिर्फ चाय को नहीं, छोटे छोटे बच्चे के सपनों को भी गर्माहट दी। एक ऐसा इंसान जिसने सड़क के किनारे जो बच्चे रहते हैं उनको अपने ठेले पे लाके एक नई उम्मीद दी।
0: क्या बात है।
1: तो सुनते रहिए ये टी स्टॉल लाइब्रेरी की एकदम प्रेरणादायक कहानी जो आज हम आपको इस एपिसोड में सुनाने वाले हैं।
0: लव यू जिंदगी, सुन रहे हो FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: गापूजी
1: त्रिशूल का ही है ना ये?
2: गपूची गाना हम आपको सुनाने वाले हैं, और उससे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की जो मैंने आपको सुनाना शुरू की थी। मेरे साथ मेरी जो को होस्ट हैं उनके और मेरे दोनों के एक एकदम डिस्कशन के बाद हमको इस कहानी के बारे में पता चला, और इस कहानी में एक छोटे से लड़के और उसके बड़े बड़े सपनों की बातें हैं, है ना
3: उर्वशी? जो कहानी शुरू की वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग, उसकी जो शुरुआत थी बड़ी अच्छी लगी मुझे कि क्या कहने वाली हो आगे, ये मैं सोच रही थी। तो बताओ कि क्या कहना चाहती हो।
2: तो एक छोटा सा बस स्टैंड है, ठीक है, वहाँ पे रोज शाम को भीड़ लगती है, कोई हाथ में थकान लेके आता है तो कोई आंखों में सपने।
3: हाँ, और इसी भीड़ में एक लड़का,
2: यस,
3: जो चाय तो नहीं खरीद पाता था लेकिन पुराने अखबार पढ़ता था जिनमें शायद अपना भविष्य ढूंढता था।
2: और चाय वाले रमेश भाई ने उसकी आंखों की भूख को पहचान लिया।
3: हाँ, मतलब भूख जो थी उसकी वो ये थी कि कहाँ है जो उसको चाहिए, ये तलाश थी उसकी, ये उसकी भूख थी।
2: उसको शायद नॉलेज की भूख थी, उसको कुछ बनना था। और अगले ही दिन रमेश भाई ने अपनी दुकान पे कुछ 3 पुरानी किताबें खरीद के वहाँ पे रख दी और लिखा कि किताब ले जाइए, पढ़िए, और लौटा ना हो तो जिंदगी सवरने के बाद लौटा देना।
3: क्या बात है, कितना प्यारे, सुनने के बाद है इसे दिल को सुकून लगता है उर्वशी।
2: यस, और इसी कहानी में आगे जब वो इंसान, वो छोटा सा लड़का किताबें लौटाने आया तब क्या हुआ था वो हम आपको
3: अभी मत बताना, पहले हम कुछ गाने सुनवाएंगे उसके बाद बताना।
2: वही गाना जिसके हमने छोटी सी झलक आपको सुनवाई थी आपके लिए।
0: गापूजी गापूजी गापूजी गापूजी गापूजी

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा

0: रेनबो को रंगी बनाएंगे। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, चांद निकलता नीचे से और मैदान।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो

0: आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर। आज आपके साथ हैं शुभांगी और
1: मैं हूँ उर्वशी।
0: हाँ तो उर्वशी, हम जो वो स्टोरी बता रहे थे ना, बड़ी अच्छी कहानी है, और क्या हुआ है आगे?
1: तो मैंने आपको बताया, जो नए श्रोता आए हैं उनके लिए, कि एक रमेश भाई की चाय की छोटी सी टपरी पर बच्चे जमा होते थे, और एक बच्चे के लिए उन्होंने किताबें ला के रखी। लेकिन धीरे धीरे वो छोटा सा चाय का ठेला एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गया। लोग चाय के साथ अपनी किताबें भी छोड़ के जाने लगे। बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो किताबें पढ़ने लगे, और शाम में सिर्फ चाय की खुशबू से नहीं लेकिन सपनों की रोशनी से भी भरने लगी। और कहते हैं ना, अच्छाई कभी शोर नहीं करती, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है।
0: और ये जिन्होंने किया ना, उन्हें तो शायद पता भी नहीं था कि उनकी ये जो छोटी सी शुरुआत थी, उससे किसी की पूरी दुनिया बदलने वाली थी, या उस समय उन्हें पता भी नहीं होगा। बस हाँ। एक छोटा सा उन्होंने जो हेल्पिंग हैंड दिया, क्या बात है। तो हम आगे बढ़ने से पहले ना गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
1: क्यों? जी हाँ, क्या आगे कहते हैं? गाने के बाद।

0: आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स। आपके साथ हूं मैं शुभागी और मेरे साथ है
1: हाय मैं हूं उर्वशी।
0: उर्वशी वो जो कहानी थी क्या हुआ उस लड़के का आगे चलकर?
1: जी हाँ, तो वो लड़का जो रमेश भाई की छोटी सी चाय की दुकान पे बैठ के किताबें पढ़ता था वो बड़ा हुआ और सालों बाद एक बड़ा अधिकारी बन के उसी शहर में लौटा। जब वो शहर में लौटा तो उसके सम्मान में कार्यक्रम हुआ जिसके स्टेज पर खड़े रहकर उसने कहा कि मेरी किस्मत किसी बड़े स्कूल ने नहीं बदली, मेरी किस्मत एक चाय वाले की छोटी सी लाइब्रेरी ने बदली है। और उसने उस शहर में एक बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी भी बनवाई और उसका नाम रखा रमेश भाई पुस्तकालय।
0: ओह क्या बात है, क्या बात है। मतलब जिंदगी में कभी भी ना किसी को मदद

करने का अगर मौका मिलता है तो हमें वो करनी चाहिए, और करने के बाद कितनी हमें भी खुशी होती ना कि हमने किसी के लिए कुछ किया है, इस बात की खुशी बहुत ज्यादा होती है जो हमसे कहलवाती है कि लव यू जिंदगी, और जिसे हम मदद करते हैं उसको भी उस पल ऐसा लगता होगा कि लव यू जिंदगी, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसे भी लगे कि ऐसी कोई एक मीठी सी याद, कोई अच्छी सी याद हमेशा अपने साथ रहे, है ना। वो एक छोटा सा जो हमारा हेल्पिंग हैंड होता है, या जो भी हम कहें कि हम मदद करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि किसी की ज़रूरत अगर हम पूरी कर सकते हैं उस समय, जो भी उसकी ज़रूरत हो, तो उससे किसी का भविष्य भी बदल सकता है, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या बात है, तो इस बात पर होना चाहिए एक गाना।

5:59 का समय है और कार्यक्रम लव यू जिंदगी को समेटने का समय बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। उर्वशी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कुछ ही देर में यानी 6:05 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज़े बयां। बस आपको सुनते रहना है, हमारे साथ रहना है। 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: ख्वाबों को रंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो। अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार और अब समय है अंदाजे बयां का। कुछ गजलें, कुछ शेर और कुछ शायरी के साथ मैं उर्वशी आपको इस घंटे गजलों की दुनिया में ले जाऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक खूबसूरत सी गजल के साथ इस सफर की ओर ले जाती हूँ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। मैं हूं उर्वशी और ये है अंदाज़े बयां। आवाज देके देख लो शायद वो मिल ही जाए, आवाज देके देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर राय का तो है। मुनीर नियाजी साहब का ये शेर सिर्फ किसी इंसान को पुकारने की बात नहीं करता, ये उन रिश्तों की बात करता है जो कभी हमारी जिंदगी में बहुत करीब थे लेकिन वक्त की बारिश में कहीं धुंधले पड़ गए। शायद कोई अधूरी मोहब्बत या फिर खुद आपका वो हिस्सा जिसे आपने भागती हुई जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो आज अंदाज़े बयां पर दिल से एक नई आवाज दीजिए, क्या पता कोई जवाब अब भी बाकी हो। मैं हूं उर्वशी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये गजल मरासिम एल्बम से है और हमारी खुशकिस्मती है कि गुलजार साहब आज हमारे दरमियान हैं यहाँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, ज़रा दर्शन दीजिए। एक इस मरासिम से जो मेरा फेवरेट शेर है, एक गज़ल का, वो मैं सुनाता हूँ, फिर गुलजार साहब कुछ कहना चाहेंगे।
1: मैं उससे पहले सिर्फ आदाब कह के वापस लौट जाना चाहता हूँ ताकि ये शाम बिल्कुल ख़राब न की जाए। बड़ी मस्ती में है जगजीत, बहुत अच्छा गा रहे हैं, और इस वक्त ने ये गज़ल जीत सिंह को ना छेड़ जाए तो बेहतर है।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो, और वक्त है अंदाज़े बयां का। मोहब्बत सोज भी है और साज भी, मोहब्बत सोज भी है और साज भी, खामोशी भी है और ये आवाज भी। अर्श मलसियानी का ये खूबसूरत सा शेर। और मोहब्बत सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये जीने का एक अंदाज भी है। कभी ये दिल में धीमे धीमे जलती हुई लौ बन जाती है, तो कभी किसी गीत की तरह रूह में उतर जाती है। कभी कुछ कहे बिना सब बयां कर देती दी है, और कभी एक आवाज पूरी दुनिया बदल देती है। मोहब्बत के रंग में रंगा ये शेर छूता है हमारे दिल के दर्द को, सुकून भी देता है

और खामोशी भी एक अनकही धुन की तरह। तो इस खूबसूरत शाम में अपने दिल की उस आवाज़ को सुनिए जो शायद बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो और मैं हूँ उर्वशी।

आप और मैं हूं उर्वशी। अंदाज़े बयां के साथ आपके साथ ये सफ़र अब ख़त्म होने को है। कहते हैं कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। जैसे किसी थके हुए दिन में अचानक सुकून उतर आए, या किसी अंधेरी शाम में हल्की सी रोशनी जगमगा उठे। खुदा के उस गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी हो जाती है, बशीर बद्र साहब लिखते हैं। और ये शेर उन लोगों के नाम जिनकी बातें दिल पर असर छोड़ जाती है, और शायद इसीलिए कभी कभी हम किसी की आवाज़ सुनने के लिए ही उनके करीब जाना चाहते हैं। अंदाज़े बयां का सफ़र आपके साथ बस यहीं तक था। आपको अगले घंटे में हम मिलने वाले हैं, और तब आपके पसंद के गाने आपके लिए लेके आएंगे। मैं हूं उर्वशी और आप सुन रहे थे FM रेनबो पे अंदाज़े बयां।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। अभी कुछ ही देर में 7 बजे आप समाचार सुनेंगे और 7:10 पर हम आपको मिलेंगे हम तुम के साथ। तो जो जो गाने आप सुनना चाहते हैं वो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि बाकी सारे गाने आपको सुनाएं। मैं हूं रोशि और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई एफ एम रेनबो और समय है 7:10 का, जो समय होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम हम तुम का। और आज हम तुम में उर्वशी हम तुम है।
2: हाँ।
1: मैं शुभांगी और मेरे साथ है उर्वशी।
2: हाय। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन किस नंबर पे कीजिए? आप हमको व्हाट्सएप करते हैं 8657661071 पर हमेशा। लेकिन जो लोग शायद आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैंने ये नंबर रिपीट किया। मैं और शुभांगी कोशिश करेंगे पूरे दिल से कि जितने हो सके उतने गाने आपकी पसंद के हम बजाएं।
1: और आपको ये जरा मैं याद दिला दूं सभी श्रोताओं को कि आप जब भी अपनी पसंद का गाना भेजोगे तो जरा हमें 3-4 ऑप्शंस दीजिएगा, वरना ये हो सकता है कि आपने जो गाना बताया वो अगर हमारे पास इस वक्त नहीं है तो हम नहीं प्ले कर पाएंगे। सो हमें 3-4 ऑप्शंस देकर ही आपकी फरमाइश भेजिएगा। सो हो जाए अब ये पहला गाना आज के हम तुम का।

आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स। और ये प्रोग्राम होता है आपके फरमाइशी गीतों का, और जिनकी फरमाइशें पूरी हो चुकी हैं उनके नाम है राकेश माथुर, प्रदीप अनंत कृष्णन, और इसके बाद बहुत सारी लंबी लिस्ट है उर्वशी अपने पास। तो इसके बाद जिनकी फरमाइश पूरी होने जा रही है वो कौन है, सुनवा दो गाना।

आप सुन रहे हैं हम तुम, और ये जो गाना फरमाइशी हमने किया था जॉनी मेरा नाम फिल्म का नाम, विजेंद्र घाटोल ने इसकी फरमाइश हमें की थी उर्वशी, और इसके बाद का जो गाना हमने चुन रखा है वो है राजेंद्र परमार जी का, उन्हें सुना है फिल्म वारिस का गाना। फिर उसके बाद दिग्दर्शन और कविता आपका भी गाना आएगा, अरविंद कुलकर्णी जी आपका भी गाना आएगा, लेकिन आपको करना है बस थोड़ा सा इंतज़ार, एक के बाद एक आपकी फरमाइशें पूरी करने की यहाँ पूरी कोशिश हम दोनों भी कर रहे हैं। तो बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूँ हमारे एफएम रेनबो के इस कार्यक्रम में, आपको अगर फरमाइशें भेजनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अपनी फरमाइशें ज़रूर भेजिएगा और हमें ज़रा तीन चार ऑप्शंस भी दीजिएगा। सो इसके बाद का गाना हम सुनेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है।

और मैं कहूंगी उर्वशी, आज मौसम बड़ा ही अच्छा है, बड़ी बढ़िया बढ़िया फरमाइशें आ रही हैं। ये जो गीत हमने अभी सुना फिल्म लोफर का, इसकी फरमाइश हमें की थी दिग्दर्शन और कविता ने।

साहब का ये गाना, और इसके बाद अरविंद कुलकर्णी जी आपका गाना सुनवा रहे हैं हम कयामत से कयामत तक का, और उसके बाद राम प्रजापति जी आपका गाना है फिल्म दिल का, और दिल से बजाएंगे हम भी यहाँ एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं आप हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स।

एफएम रेनबो पर हैं आप और हम तुम में हम आपको आपकी ही पसंद के गाने सुना रहे हैं। तो अब समय है राम प्रजापति जी को खुश करने का, क्योंकि उन्होंने फरमाइश की थी दिल फिल्म के गाने की, जो मैं और शुभांगी मिलके उनको सुनाने वाले हैं। बस अब थोड़ा ही समय बचा है हम तुम में, तो हम बातें कम करते हैं और आपको कुछ और मीठे मीठे गाने सुनाते हैं एफएम रेनबो पर।

0: एफएम रेनबो पर आप सुन रहे थे हमारे साथ हम तुम।
1: और अब इसके बाद एक आखिरी फरमाइश उर्वशी, और यह है पंकज मोहर की फिल्म कुछ कुछ होता है का गाना सुनना चाहते हैं, और यह है आखिरी गाना हम तुम के इस कार्यक्रम का, और इसी के साथ इजाजत लेना चाहेंगे मैं शुभांगी और मेरे साथ
0: उर्वशी।
1: ठीक 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रॉक विद जॉक की शा के साथ, तो बस सुनते रहिए हमारे साथ रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं।

0: की रौनक होते हैं और कुछ लोग खामोशी में भी याद आते हैं। कार्यक्रम चल रहा है रंगे महफिल और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपके साथ है आपका दोस्त वीर धवन। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। महफिल सजी थी, लोग भी थे, बात भी थी, फिर भी कहीं एक अधूरापन सा था। शायद कुछ रिश्ते आवाज से नहीं बस एहसास से पूरे होते हैं।
1: चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, गोरे गोरे हाथा की सगाई, आशिक के मन को भाई, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, चूड़ियां।
2: ए चूड़ी वाले, चूड़ी वाले, चूड़ियां दिखाओ ना, चूड़ियां दिखाओ।
3: इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़ियां कयामत ठहरेंगी।
2: ये क्या कर रहे हैं?
3: चूड़ियां पहना रहा हूं बीबी।
2: हमको और चूड़ियां दिखाओ ना, हमको धानी चूड़ियां चाहिए।
3: धानी चूड़ियां चाहिए? अब धानी चूड़ियां कहां से लाऊं मैं? ये चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है रंग के महफिल। कितना बेबस हो जाता है इंसान, अब वो किसी को हो भी नहीं सकता और किसी का हो भी नहीं सकता। या इंसान जब बेबस हो जाता है तो वो किसी का हो भी नहीं सकता और किसी को खो भी नहीं सकता, बस यही फरियाद करता है।

कहते हैं कि एहसास करा देती हैं रूह जिनकी बातें नहीं होती, एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती, इश्क तो वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल।

कहते हैं कि किसी को सलाह दो तो उसको साथ भी दो। साथ देना जरूरी है क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ गलत नहीं हो सकता। ये सुदेशना मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से लिखकर भेजा है। और हमारे साथ कई हमारे और भी दोस्त जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नाम राहुल रेनू, ये जुड़े हुए हैं शादरा बिहारी कॉलोनी से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मैसेज आया हुआ है, ये रियाद से मैसेज आया हुआ है और ये लिखा है रियाद से फैजिया फरहान फारूक ने अपना मैसेज भेजा है। और आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ और भी कई हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, तो सभी का तहे दिल से स्वागत है। अभिजीत काकड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फारूक अली खान, फैजिया फरहाज, फरीन फरहान, फरिया, कस्बा गनौर यूपी से।

किसी ने क्या खूब कहा है कि परिंदों की फितरत से आए थे वो, परिंदों की फितरत से आए थे वो, मेरे दिल में जरा से पंख क्या निकल गए, आशियाना ही छोड़ दिया। FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है रंगी महफिल।

इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं और रंगे महफिल सुनने वाले भी हजारों हैं। दिल से दिल तक आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर चल रहा है रंगे महफिल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हर कोई पाने की जिद में है, शायद मुझे कोई आजमाने की जिद में है, जिसकी चाहत है मुझे इतनी वही मुझे भूल जाने की जिद पे है। दोस्तों अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, अब हमें भी इजाजत दीजिए इस प्रोग्राम से। अब आपका दोस्त वीर धवन लेता है इजाज़त और चलते चलते इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुमको है इंतज़ार, खुद पर यकीन और रब पर एतबार करो। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ज़िंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। बाय, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी
1: ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित

0: न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सेथो एफसी और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा उचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को और

0: इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 1:05 और 30 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

इसीलिए तो कहता हूं यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो बाकी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, DGP और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य VIP काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाणी आकाशवाणी 2:05 हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर वे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और आधी रात के 3:06 हुए हैं और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। और तो बस इसी तरह आप सपनों की दुनिया में और गानों की दुनिया में खो जाइए और इनका मजा लीजिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और सुबह के 3:54 हो चुके हैं। मिडनाइट मेलोडीज शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक आप एंजॉय कर रहे हैं और अब इस घंटे का ये आखिरी गाना फ्रॉम द मूवी एक्सपोज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश

तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:06 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल, और जैसा कि आप नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक सुन ही रहे हैं, तो इस घंटे भी सारे गामा शो में आप नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक सुनेंगे। तो इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, और हरिहरन की आवाज में स्टार्ट करते हैं ताल मूवी से इस गाने के साथ।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: शुरू हुई है। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

धुरंधर द रिवेंजर्स ये गाना आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। शो का नाम है सारे गामा, जिसमें नॉनस्टॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं। और अब ये लास्ट गाना है इस शो का, और इसके बाद सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे।